0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz
0: हरपल
1: हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 PM
4: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हरपल
0: हर
1: तपाईं सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 8 PM।
2: अहिले रातको 8 बज्यो।